आंगन सुख बासना, सखी मूरै कंठ रतन, पेख दुख नासना, बासों संग गोपाल, सगल सुख रास हर, हर हां रिद्ध सिद्ध नव निध, बसह जिस सदा कर, पार त्रय रावण जाहे, सेई तां लाजी है, नित प्रत हिरह पर दर्ब, छिदर कत ढाकी है, हर गुण रमत पवित्र, सगल कुल तारई, हर हां सुनते पए पनीत, पार ब्रह्म बीचारई, ऊपर बने आकाश, तले तार सोहती, दह दिस चमकै बीजल, मुख को जोहती, खोजत फिरो बदेश, पियो कत पाइए, हर हां जे मस्तक होवे भाग, तां दर्श समाइए, दिठे सबे थाम, नहीं तुद जेहया, बदहो पुरख बधाते, तां तू सोहया, वसदी सगन अपार, अनूप राम दास पुर, हर हां नानक कसमल जाहे, नाये राम दास सार, चात्रक चित सुचित, सो साजन चाहिए, जिस संग लागे प्राण, तिसै कौ आहिए, बन बन फिरते उदास, बूंद जल कारने, हर हां त्यों हर जन मांगे नाम, नानक बलिहार ने, मित का चित अनूप, मरम ना जानी है, गाहक गुनी अपार, सोता

सच तना सुपने उ भी पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

जावई। औखद नाम अपार अमोलक पीजई। मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई। जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी। हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी। वैदा संदा संग इकट्ठा होया। औख दे आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए।

हेम की दम के हो होती साठ रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह पवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिया संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया तिन खाया अवर बलो वनहार, कबीर माया चोरती मुस मुस लावे हाथ, एक कबीरा नाम सै।

कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया कोई। ऐसे मरने जो मरे बहुर।

हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर शत।

अजो सोना उस समुंदर में क्या जानू क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयंग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए टोग नैना सूत सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

और काया हांडी काठ की ना उह चढ़ वो होर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या दर्पना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसी है गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमहा।

कबीर रमैया कंठ में चूकह है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों

पति पकारे चेह चढ़ी। सुनो हो वीर मसान, लोग सब आया चल गयो, हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले, सो तै सो फल खाए। कबीर जा को खोजते, पायो सोई ठोर। सोई फिर कह तू पया, जा को कहता और। कबीर मारी मरो पसंग।

जिन हर का नाम ना चेते हो, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते।

क्या करे, जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते,

बुझावन हार कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम न जाए आप डुबे चौ वेद मह चेले दिए बहाए कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए प्रगट भये निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन।

आई सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो राखे नार गद ही हुई कै अवतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाए कबीर सब जग हो फिरे मांदल कंध चढ़ाए।

आई जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजै कोई पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधे हो जे

रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी देस है उगवत सूर। कबीर सूता क्या करह जाग रोए पै दुख, जा का बासा गोर मह सो क्यों सोए सुख। कबीर सूता क्या करह उठ के

जरा पहुंचो आए लागी मंदिर द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कीनो करतार, किस बिन दूसर को नहीं एक कैसे जनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम को।

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओभरी मस के कर्म कपाट, पाहन बोरी प्रथमी

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परयो कटंब कै कंठ रह गयो राम आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव ओ साकत बपरा मर गया।

रहा भीतर परी पंगार कबीर रोड़ा हुए रहो बात का तज मन का अपमान ऐसा कोई दास हुए ताहे।

चाहिए ज्यो पानी सर्वंग। कबीर पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता हुए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कल कामनी शिखर तजा फहराए, ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला,

आई बनजन हारे बाहरा कौडी बदले जाई। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सबह को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाह आएक लागत ही पोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाइए फूक। कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुजै

हाथ जब ही पाई है पारखू तब ही हिरन की साठ। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा।

पाचै परी बहीर एक अवघट काटी राम की तेह चल रहे हो कबीर कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किस का लाज सी जब

असंत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जान नाही कोई कै जान आपन तनी कै दास दिवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी।

पास चोट सहारे शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत

दिया, तब हुई गो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जा मह अमृत लोन। हेरा रोटी कारने गला कता वह कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। हरख सोग दाजै नहीं, तब हर आपह आप। कबीर राम कहन मैं भेद है, ता मह एक विचार। सोई राम सबै कह, सोई कौतकहार। कबीर राम राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक अनेक कह मिल गया, एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेविय, हर की सेवा नाए। ते कर मरहत सारखे, भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पावहु ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में, बाहया बान जो एक। लागत ही पोए गिर परया, परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार। बिन संगत इउ मानी, होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

मारह जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जो बाब खदाई।

मन में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी आवद, हट दर्शन संसे परे हर चौरासी सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

दास कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखे सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्वली भावनी प्रगट होई आए कबीर टालह टोलह दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवा कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय लै।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करे या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करे जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे।

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई थाक ना अवकट घाट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे

नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पीसो किसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो सुन।

वामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पच मुआ, चारो बेदोह माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर, जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, पाके से ती खेल। काची सरसों पेल कै, ना खाल पई ना तेल। टूंडत डोल है अंधगत, हर चीनत ना ही संत। कह नामा क्यों पाईए, बिन भगत हो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै, करह आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत पाख है रविदास। कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर।

किचर झत लंघाई है छप्पर टुटे मेह फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हाली है जंगल क्या टुंडे फरीदा इनी निकी जंगी है थल डूंगर पवे ओम अज फरीदा कूजड़ा सह कोहां थे ओम फरीदा राती वड्डिया धुख धुख उठन पास एक तिना दा जीविया जिन्ना वडाणी आस फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा फरीदा लोड़ै दाख बजौरिया।

जाए। गहला रूह ना जाने सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों मांझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।

नाती तोती संभही सुती आए निचिंद फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी गई कथूरी गंद जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

चित तन बिहो ना उपजै सो तन जान मसान फरीदा ए विस गंदलां धरियां खंड लिवाड़ एक राहिंदे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मगेसिया तू आहू केरे कम फरीदा दर्द रवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल कड़िए कड़िए।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेता परिदा मंडप माल ना लाई मरगस पानी चित धार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाए परांद दरवे सानू लोड़ी है रुखा दी जीरांद फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वीस गुनही।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवह उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

पास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टूटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम

पंजे वक्त मसीत कोठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवे

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीण हो हे फरीदा मन मैदान कर टोए तिबे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संदी पाही महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे फरीदा जे देह नाला कपया

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा होए रहे

करन कारण सब आपी सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापी व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रख्या करै आपे हर पत अवनासी अवगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक है अन नाही तुम पत

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाने हां की बल बल बल बल सत बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जान कौन तेरो प्यो अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार

अकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हर्तानी।

चेत तन निर्मत दुर्लभ देहे सवार करी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अरबंदप गुजन की सब सूझ परी वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नांग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु।

ज्ञान हे भगवंत कृपा करता रहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

औध तन जारी कर्म धर्म संयम सोच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत पुदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रवतारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलह हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु भांति विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत।

गिर दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

योगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदादिक मन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल

सत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावै गुण शेष सहस जिहवा रस आद अंत लिव लाग तुना गावै गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निरवैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखानियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौ राज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल

समलोचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव परीक्षित गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु गुण गावे पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मानियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायो।

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वास करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिर।

खवै कस बिमल बीचार है, एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी। सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो। हर परस्यो कल समुल वै, जन दर्शन लहने भयो मन विसास पायो। गहर गहो हदरथ दियो गरल नास तन नठियो, हम्यो अंतरगत पियो रिद बेगास जागियो। अलख कल

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि काव जन कल सबुद्धि कीर्त जन अमृत।

कुब अर पश्चम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर को फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लोजिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुतरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

नाम नावन नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सक्यार्थ जन्म कल उच्चरै गुर परसेओ अमर परगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख।

अलख है, एक एक कर वरनेऊ गुरु अमरदास जाल पपण है। तू एक लोड़ है एक मन्यो, जे मत गही जय देव, जे मत नामे सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीर है जानी। रुक मांगद करतूत, राम जंप हो नित पाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तैं लोभ क्रोध तृष्णा तजे, सो मत जल जानी जुगत, गुरे अमरदास ने।

आस चरण है लिव रहियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहि त्राहि तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियु निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल अव

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान

सनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो ध्रम तनक कर गहियो भगत सील है सर लड़ियो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्डियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

मावल कुसुम बसंत गणंत ना आवे। रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर

मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करहै लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सर अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आ

माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायु गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायु संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संजम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लग तरी।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भय सत गुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरै।

गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग श्री गुरु सरन भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारै शब्द रिद बिचारै काम क्रोध खोवै जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान बिख्याता अहनस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

ओंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई।

पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कवल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह तारियो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो सास रेख निससूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के तारियो त्रिभवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बीचारै काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

क्या कीजै जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच है घर जो गुरु गुरु अहनस जपै दास।

जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो बिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बेपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन अहन सरसै सत कर जानी ओह कुन प्रेम रंग पाई गुरमुख है त्याई अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाई है हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बान निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई। तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई। अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी। श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै। एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभाते है कर है स्नान, स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं। कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन। जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह। जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

देख रूप अत अनूप मोह महामग पहे किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आद

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी न जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आदि।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कौ हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कौ मथरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कौ हर नाम बोहित।

मतरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बद

कर दे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जां को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहु का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गह नात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहों लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह ज्यो कुसुम सुबासे विदहमान गुरे आप थप्यो थिर।

तरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजूनी संभो

देखत अत हुए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानियो तीनी भगत प्रेम लिवलाई तांते अंगद अंग संग भयो शायर तिन शब्द

मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो काल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनपहो ठहरायो जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर शब्दे मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीना गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गूड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो अजोनी संभवियो सुजस कल कवियन बखाणियो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान साध जीवन अर्जन अमोल आजुनी संभव कै भंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गहन भ्रम भ्रांत दहन शीतल सुख दातो असंभवो उदवियो पुरख पूर्ण बेदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मलायो जय जय कार जास जागे अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन भर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बखता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम धीर गुरमत गंभीर पर दुख बसारन शब्द सार हर सम उधार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नव निद नान खुटे गुर रामदास तन सर्ब मैं सहज चंदुआ ताणियो गुर अर्जन कल उचरे तै राज जोग रस जानियो पै निरपहु मानियो लाख मह अलख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर।

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखोह नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज।

देखियत ताम स्यों अपार परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हित पाई रहो मिन राम स्यों अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए।

किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डु

वह सदा सदा सुरती ही पत होए, सर्फ सर्फ सदा सदा एव गई विहाय। नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए, दोष ना दे ओ राए नो मत चले जा बुढ़ा होए। गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोए, पूरे का किया सब कुछ पूरा काटवा।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाय नानक होर पातशाहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है हत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए तन तन कल युग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उर धार तिग तिन्ना का जीविया कित आए संसार गुरमती भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया जन नानक पार उतार माया मोहि जग भरमिया।

जिह है मन चढ़िया दसवें आकाश किथे ऊग ना भूख है हर अमृत नाम सुख वास नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम परगास काम क्रोध का चोलड़ा

भई मर जीवया सहज सुभाई नानक भगती रतिया हर हर नाम समाय मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई पुत कलात्म।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा। हौ सद बनेहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्मल।

शब्द रही लिवलाई, नानक करता सब किश जानदा, जिन रखी बणत बनाई, होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण, बिख माया मोह ना मिटई, विच हूं मैं आवन जान, सतगुर मिले मल उत्तरी, हर जपया पुरख सो जान, जिन्ना हर हर प्रभ सेविया, जन नानक सद कुरबान, माया मोह बहु चितवदी, बहु आसा लोभ विकार, मन मुख अस्तर ना थी है, मर बिन सजाई खिनवार।

पाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मन आए जन्म मरण की मल उत्तरै जन नानक हर गुण गाय तुर हर प्रभ करतै लिखिया सो मेटना न जाई जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राय चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए बाहर पखंड सब कर्म करह मन हृदय कपट।

सुजई ना सुजै दरबार माया मोहि पलीटिया अंतर अज्ञान गुबार तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चीतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवहि, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहहि, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान, मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही, विच हम मैं कर्म कमाव दे, सब धर्म राय कै जाही, गुरमुख हच्छे निर्मले, गुर कै शब्द सुपाई, ऊना मैल पतंग न लगई, जे चलन सतगुर पाई, मनमुख झूठ न उतरै, जे सौ धोवन पाई, नानक गुरमुख मेलियन, गुर कै अंक समाई, बुरा करे सो केहा सिजै, अपने रोहे आपे ही दज्जै, मनमुख कमला रगै लुजै, गुरमुख होए इस सब किस सुजै।

जीव सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटिय है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

भाई अपनी पत के साध आपे खाई किसका क्या सलाही है भाई दर्शन को बल जाई सतगुर विच वडियां वडियाईयां भाई कर्म मिले ता पाई एक हुक्म मन ना जाननी भाई दूजे भाए फराई संगत ढोई ना मिले भाई बैसन मिले ना खाऊ नानक हुक्म तिना मनाए सी भाई जिन्ना तुरे कमाया नाउ तिन विट हो हों वारिया भाई तिन को सद बलिहार है जाओ से दाड़ियां सचियां जे गुर चरनी लगन अन दिन सेवन गुर अपना अन दिर हन नानक से मुह सोहने सच्चे दर दिसन मुख सच्चे सच दाड़ियां सच बोले है सच कमाहे सच्चा शब्द मन बसिया सतगुर माही समाहे सच्ची राशि सच धन उत्तम पदवी पाहे सच सुन है सच मन लैन सच्ची कार कमाहे सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माही समाहे नानक बिन सतगुर सच ना पाई मन मुख भूले जाहे बाबी हा प्रियो प्रियो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तिस चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख।

तन मन सुख होए जां तत बूंद मोहे पाए अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए कै का सहज सिंगार करे हो साचे।

पास सतगुर मिले जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोए हर उठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए बडड़ै चाल चाल चलंबलै

जोग पाइए सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जोग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मनमुख सहु कर दोस्ती सुख

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर।

हो क्यों सज्जन मिलह प्यारिया औंट नेंदी तिन सज्जन सच सुआरिया सतगुर मैं डा मित है जे मिले ता एहो मन वारिया।

गुरु का फरमाया मन ना सकी दुत्तर तरिया ना जाए नदर करे जिसे अपनी सो चले सतगुर पाए सतगुर का।

आया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए आन दिन रह आनंद नानक सहज समाइए।

कर्म कर नानक लेहो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

तद उज्जले इत सच्चै दरबार तिन बहदिया उठदिया कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले।

भव जल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी, अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए, सब दुख निवारण हार, मनमुख सेवा जो करे, दूजे पाए चित लाए, पुत कलत कुटंब है, माया मोह वधाए।

हुक्म आरादि हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया फल पाए सदा

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग नाद

आए जम्मन मरन ना चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरै नानक लए छडाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो पौजल जग

रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

ठहराइया। नानक सफल मारू एहो राग, जामू एक ता लख तौ जिती। पिन्नड़े दर कितड़े, बामण बिरथा गयो जनम।

लागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना।

तरन आपो यो ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औध जात है बीत बिरद पयो सूजै नहीं।

है पाई चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुनरे मना हर पावे सो होए जग

मनुदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पटमंजरी टोडी कही अलाप कामोद।

असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मान रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह।

हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर

हर के जान सतगुर सतपुरखा बिना करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरणाई तर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मुख और राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवा जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर का रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब ताप है जपे बेंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते कमल सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल।

सहस्ताव नयन नान नयन है तोय कौ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामय जोत जोत है सोय हिद चानन सामय चानन होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जुत भावे सु आरती होय हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद नमय आई प्यासा।

मद देख भूला विसर तेरा चित न आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

तन सास अड़सठ तीर्थ का मुख टिकता तिरकड़ मत विगास उत्मती सालहाना सच नाम गुणतास बाबा होर मत होर होर जे सो वेर कमाई है कूड़े कूड़ा जोर रहाव पूजल के पीर आखी है ता मिले संसार नाओ सदाए अपना होवे सिद्ध समार जापत लेखे ना पवे सबा पूज खुवार जिनको सा गुर थापिया तिन मेट न सके कोए ओ न अंदर ना मनदान है नामो प्रगट होए नाओ पूजिए नाओ मनिए अखंड सदा सच सोए खेऊ खेर लाईए ता जियो के आ होए जलियां सब सियाणपा उठी चलिया रोए नानक नाम सारे।

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खेलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंदिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

खाओ, जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणजे मंतन खोटा होए, पाही फाते मिर्ग ज्यो दू कणोन तरोए, खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्शना होए, खोटे जात ना पात है खोड ना सीज सकोए, खोटे खोड कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया भार ना परम तिनाहा, हर जप लहा अगला निरपो हर मन माहा, श्री राग मखला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी रे दिन चार, पबन के रे पज्यो टाल टुल जुमन हार, रंग मान ले प्यारिया जा जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके।

पद निर्वाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पेत सुतो सगल काल तर माता तेरे होए न अंत सखाया रहाओ बिखे बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्म होए ते आई जब तब संजम होए जब राखे कमल बिकसे मद आश्रम आई बीस सवतारो बासुरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सार है दस अठार में

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेख सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहां करे मनमान देमन हारे कै हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कै कह क्या होए आपे सच पावे तिस

कमावे, बिन सतगुर सुख न पावई, फिर जो नी पावे। हारे हार कंठ जी ने पहरिया, कुरचरणी चित लाए, तिना पिछे रिद सिद फिरे।

ते से निर्मले हौ सदबरे हारे जास फिर दे जिन के हर वसे तेत कट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरम खरे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देख सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वसे अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओ सदा

अमृत सत्या नाम है, कहना कशु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

मान रे दूजा पाओ चुकाए अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सो पाए अरहाओ सच बाणी सच शब्द है जहाँ सच तरे प्यार हर का नाम मन वसे होम में क्रोध निवार मन निर्मल नाम त्याई है ता पाए मुख द्वार होम में विच जग बिरसदा मर जम्मे आवे जाए मन मु शब्द ना जाननी जसन पद गवाए गुर सेवा नाओ पाई है सच्चे रहे सुमाए शब्द मने गुर पाई है विचों आप गवाए अनदन पगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वसया नानक सह सुमाए श्री राग महला तीजा जिन्नी पुरखी सदगुर ना सेवयो से दुखिए जुग चार कर हुंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अहंकार सदगुरु क्या फिटकया मंग थके संसार सच्चा शब्द ना सेवयो अब काज सुवारण हार मन मेरे सदा हर वेख अधूर जन्म मरण दुख पर हर शब्द रहा परपूर अरहाओ सच सलाहन से

सच्चे शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरों दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर, जो जागे से उबरे सूते गए मुहाए, सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाय, सुन्ये कर का पौना ज्यों आया त्यों जाए, मानव जन्म बिरता गया क्या मोदे सी जाए, सब कुछ आपे आप है होमे विच कहन ना जाए, गुर के शब्द पछाणिए दुख होमे विचों गवाए, सतगुर से मन अपना हों तिनके लागो पाए, नानक दर सच्चे।

चौजुगी सट्टो सत सुनाए, होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए। इनको मैल खदूर है जो सत्य रखे लिवलाए, नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए। पूरे भाग सत संगत लहे सगुर भेटे च से आए, अनदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच हो जाए। नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाइन हर राख्या उर तार, सच्ची बाणी सच मान सच्चे नाल प्यार। मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार। हरहाओ सच्चे शब्द मन मोया, प्रव्यापे लय मिलाए, अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए। ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए, जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिने आए। विण नावे सब डूमणी दूजे पाए खुवाए, तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए। परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए, नदर करे प्रवे अपनी आपे लए मिलाए। सबके सुनदा वेखदा क्यों मुकर पए आ जाए, पापो पाप कमाऊं दे पापे पजे पचाए। तो प्रणदर न आवई मन मुख बूझ न पाए, जिस वेखा ले सो ही वेख नानक गुरमुख पाए। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग न टुटई, होमे पीड़ न जाए, गुर प्रसादी।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से राम विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन शब्द दे सोने, तिस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, होमे विचों कोय, सातन नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा, सच्चे नाय तृप्त हो।

निमाणिया गुरमाण है गुर सदगुर करे साबास, कौ गुर सलाह न रजऊ मैं मिले गुर प्रापास, सागुर नू सब को लोचदा जेता।

पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिन्नी मेरा प्रत्याया नानक तिन कुर्बान, श्री राग मोहल्ला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखे आपाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए। मेरे मन गुर शब्द

संग समाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कह।

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस भंडार।

पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एक करणी सार आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना दूते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी कुंवर पुरख सो जाना रखाओ मान अवमान मंदे सो सेवक नाही तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही कैन कहामन यो कीर्त करला कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गात अवगत कछ नदर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया।

को नहीं जिन दिता आत्म दान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुखाए सच्चे से तीरत्या दरगे बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक सचो सच वखाणीए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहा जप नानक जीवे।

पाए, गुर राखे से उबरे हते सुन लाए। हर जीव सबत पछाणीए साजर ते गुरवाक, तेत तन मैल न लग गई सच कर जिस ओ ताक। नदर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक, जिन्नी सच पछाणिया से सुगिए जू चार। हो मैं तिस ना मार के सच रखिया उर तार, जग में लहा एक नाम पाई गए गुर विचार। साचो वखर लदिए लाभ सदा सच रास, साची दर गए बैसई

आओ। सर्ज गबाधो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हों तिनके बलहारण दर सच्चे सतियार, सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर पाथे चोगे साथ, बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ। सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तेन मन सच ध्यान। मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिले सुख पाया जम दूत मोए बिगकाए, नावे अंदर होमसा नाव से मन आए। बाज गुरु गुबार है बिन शब्दे भूल न पाए, गुरमती प्रकाश होए सच रहे लिवलाए। तिथे काल ना संचरे ज्योति ज्योत सुमाए, तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार। गुर शब्दी साल आई है अंत न पारावार, तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार। हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमागे, हुक्मी काले वस है हुक्मी साच सुमागे। नांग जोत पावे सोती है ये ना जनता वस किशनागे। श्री राग महला पहला मन झूठे तन झूठ गए, जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ बोलना।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधक नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुख मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भक्ति पाए विगुणिया मुख काला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप शाने कर।

तेर रहे सुहाग भाई रे अबर नहीं मैं ताओ मैं तन्ना मन दान है गुरदिया बल जाओ अरहाओ गुरमत पात साबा तिस तिसके संग मिलाओ जिबन कड़ी ना जीवो बिन ना वे मर जाओ मैं अंदले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला किले ना गीटाओ बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन नावे क्या साओ आए गया पछतावना जो सुन्ये कर काओ बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत तब लग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत सब दर पे कर बाई है निर्वाणी पद नीत हाँ गुर पूछो अपने गुर पुशकार कमाओ शब्द सलाही मान वस है हों में दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ सब दरते से निर्मल है तक काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार सब मरे सो मर गए।

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरमन आप ना चीनिए कह सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये, जो बन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी। बिन पिर बाद सीगार दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान सजानी है पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए, मन में मनुआ जे मरे ता पिर रावे नार। एक तागे राह मिले काल मोतियन का हार, संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए, वाह पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। कारकुम आवे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल, कतने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है बिन घर भगत प्यार।

रह बक्से भगत भंडार अरहाओ रे मन ऐसी हर सो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल को तो सो कणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवै प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हर सो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वड्याई दे अरे मन ऐसी घर सो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मन मु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर।

सिद्ध बह देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार दार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए बखानी है।

क्या माया कर्म कमाए, तो सुख ए जो बद है हम में कर्म कमाए, बिन शब्दे परम न चूकई ना विचों हम में जाए, बिन प्रीति भगत न होवई बिन शब्दे थाए न पाए, शब्दे हम में मारिए माया का प्रम जाए, नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहज सुपाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वछल हर मन मसया सहज मिलया प्रसोए, नानक शब्दे हरसा लाइए कर्म प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभु कीना अपे परम पुलाए, मानव कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी असी जग में चानन कर्म वसे मन आए।

सदगुर मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए ऊरे शब्द सब सोझी होई हर नामे रहे सुमाए मन मेरे सदगुर से चित लाए निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई क्यों रखे त्यों रहना कुर के शब्द जीवित मरे गुरमुख पवजल तरना वड़े भाग नाव पाईए गुरमत शब्द सुहाई आपे मन मसिया प्रव करता तैजे रहा सुमाई एक ना मनमुख शब्द ना पावे बंधन बंद पवाया लख चौरासी फिर फिर आवे बिरथा जन्म गवाया भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अनदिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम सुवाते गुरमुख अमृत बाणी बोल है तब आत्म राम पछाणी एक कोसे मन एक अराध है गुरमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वस्ते मन आए तदा रंग राते सच स्यों

तेरे अंतर शब्द बसाया सईयां से सोहागणी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लए मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर तरे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हों सतगुर विटों कुमाया जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा।

हर आपे परम भुलाएगा, हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रकाश है, से विरले के ही के हों बलिहारी तिन कौ, जिन घर पाया गुरमते जन नानक कमल प्रकाशिया, मन हर घर मुठड़ा है, मन हर घर जपन करे, हर गुर सुनाई पज पो जिंदु, सब किल विख दुख पर हरे हरहाओ, धड़कड़ रमैया मन मसे क्यों पाईए कित पत, गुर पूरा सदगुर पेटीए हर आयब से मन चित, मैं तर नाम आधार गए

आया रंग रतला हारंग रत हर त्यावो हर प्रभ सत गुर बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत हर हाव जिनको पूर्व लिखिया ते आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर घर नाम प्रकाश तन तन वणजवा पारिया जिन वखर लदेड़ा हर रास गुरमुखां दरमुख उजले ते आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आ तुटा गुणतास हर त्यावो साज ग्रास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखां हर नाम जिन्ना रहे रास हर हाव एक ओंकार।

लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कहू न तूर सने हो कलम सजनी जाए सी लिखिया पी ना ले जाए नानक साहिब प्रीत ना जाए सी जो तुर छोडी सच्चे पाए मोहला तीजा नदरी आमदा नाल न चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दृढ़ाया सच रहो लिवलाए नानक सबदी सच है करमी पल्ले पाए पौड़ी अर अंतर बार एक तू तू जाने पेद जो कीते सो हर जानदा मेरे मन हर चेत सो डरे जे पाप कमांदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच तां डरिए केत जिन्ना नानक सच पछाणिया से सच रलेत सलोक महला तीजा कलम जलो सण मसवाणिए कागद पीप जल जाओ लिखन वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक विण नावे को सिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है।

आए पौड़ी सिष्ट उपाई सब तुद आपेरिक संभाया एक वल छल करके खाम दे मोह कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे भावे सो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाए तिना सफल है अचेता हथ तड़ाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद वखाण है माया मोह सुवाए दूजे पाए हा नाम सारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो दिंदा रिजक समाहे जम का फहा गलो ना कटिए फिर आवे जाए मनमुख किशु ना सूझे अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुखदाता नाम से मन आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विखाए नानक सो नाओ मनो नाम सारी है जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर से सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आ पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चे शब्द सालाना सुखे सुख निवास जब तब संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाओ पाईए मनमुख मोहे विनास ज्यों पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास तब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे ते सब कुछ मिले एक ना दूर है पास सब बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नू सालहां दे दर गुरमुखा नू परगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख दा वार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तिनी नाओ पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नू आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक सबदरते से मुक्त है हर जीव हेत प्यार पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे ताए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाईए हर पार लंघाए मन हठ किने न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लए हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो सूरावरी आम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप हुआ सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोन सच द्वार नाम प्यारिया मनमुख मरे अहंकार मरण मगाड़िया सबो वरते हुक्म क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम वसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख वसारिया। महला तीजा गुर पूरे हर नाम दिड़ाया तिन विचो परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाई कर चानन माग दिखाया होमे मार एक लिव लागी अंतर नाम साया गुरमती जम जोए न साकै साचे नाम समाया।

पौड़ी तू ऐसा हर नाम त्याईये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए तू ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए तू ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया बड़ भागी तिन निंदक दुष्ट सा पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नावे अगे आने वाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करेगा वार गुरके पाने जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट ना सकी है जो

सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो। माज महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांत पई बूझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतिपाले,

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता नाओ पाए तापत राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

आए जिन रच रचिया तिसे ना जाने अंधा अंध कमाए जा भजे ता ठीकर होवे ताड़ ता कड़ी ना जाए नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार ना पाए महला दूजा देंदे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानी है तुरत मत चतराई ताकि क्या करे आख वखाणी है अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानी है जो धर्म कमावे इस धर्म नाओ होवे पाप कमाने पापी जानी है तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आख वखाणी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति वही तू बुल है विण ज्योति कोई किस करो दिखा सियाणी है नानक गुरमुख नदरी आया आ इको सुगड़ सुजानी है पौड़ी तुदे आपे जगत उपायक तुदे आपे तंदे लाया मोठ गौली पायक तुदे आपो जगत खुवाया इसना अंदर अग्न है नै तिरते भुखा तिहाया सहसा एव संसार है मर जमे आया जाया बिन सदगुर मोह ना टुटई सब थके कर्म कमाया गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया तोबा सुरत सुहावनी जिन हर से ती चित लाया।

हिरदे नाम नित हरस भोग गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए जन्म जीत लहा नाम पाए रहाउ ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा ते किने विरले तख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बाध्यो माया फास जन नानक छूटे गुर परगास महला तीजा गौड़ी बैरागन जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासया बिन पगा वरसत फिराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही योग करत है सोई कोई है रे तैसे जाए समाही रहाओ स्त्री पुरख होए कह क्या वे कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तुझगी महे सुमाही इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही जा का कार्ज तोई पर जाने जे गुर कह शब्द समाही

जनकी उपमा तुझे वडाइया रहाओ। मंदर कर आनंद हर, हर जस मन भावे, सबस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे। हर जन परिवार सुधार है, एक ही कुली सब जगत छिड़ावे। जो किया सो हर किया, हर की वडियाई, हर जी तेरे तू वरतदा। हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाएंदा, आपे वरताई लाला हार।

तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले ता विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम घर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता,

दया करो हर दस दिखाओ, मेरे मन तन लोच कन्हेरी, हराम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी। गुर किरपाल किरपा किंचित गुर कीनी, हर मिलिया अयपा मेरी हरहाओ। जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम घर जानो मेरी। अनदन नाम जपी सुख पाई, निर्जीवा आस घर तेरी। गौर सतगुर दाते पंत बताया, हर मिलिया अयपा मेरी। अनदन अंध पया बड़भागी, सब आस पूजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीश करते, सब वस गत गया।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विच आया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जे वा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बोर ना पूख लगावे। कोई करे उपाप।

तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवन तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सागुर ते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर्ग सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी ही रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याध हस्त कोड़े आर बस्ता।

व्याप्त रूप जोवन मद मस्ता, व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार, व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए, ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई, गौड़ी ग्वारेरी मोहल्ला पंजवां, नैनो नींद हरदेट विकार, श्रमण सोय सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध, मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साव तवस्तु अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती, गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे, तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्टवाद होते, हर कृपा मुझ सारंग पान, संतन तूर सरबन धान, साध पूजनी सदगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सुखुर कही है, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हर भाव जिस होए दयाल आ मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

जाको रास हारस आयो तो अनस नहीं लपटायो। जाका कहया दरगह चले सो किस को नदर ले आवे तले। जाका सब कुछ ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। गौड़ी मोहल्ला पंजवा जाक दुख सुसम कर जापे ताको काड़ा काम ब्यापे। तेज आनंद घर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय हरहाओ। जाके चिंत बसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे। जाके बिनस्तु मन ते परमा ताके कछु नाही डर जमा। जाके हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताके सगल निधाना। गौड़ी मोहल्ला पंजवा अगम रूप का मन मैं थाना गुर प्रसाद किने विर ले जाना। तय कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा। हरहाओ अनहत बाणी पान निराला ताकि तुन मोहे गोपाला। तय सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता। हरख अनंत सोख नहीं दिया तो घर गुरु नानक को दिया। गौड़ी मोहल्ला पंजवा कमन रूप तेरा आराधो कमन योग ताया ले साधो। कमन गुण जो तुझ ले गावो काबल मोर पार ब्रह्म रिझावो। रहाओ कमन सो पूजा तेरी करो कमन सो विद जिद पवजल तरो। कमन ताप जिद तपिया होए कमन सो नाम होमे मलख होए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल कहाल जिस कर कृपा सदगुर मेले दयाल। तेसी गुण

सुदबंता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत या बाप न माई, सोयना रूपा भुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मनाया, तिसका सब

एक टकाई, दुग बिन से सुख हर गुण गाय, और पूरा पेटा लिवलाए रहाओ। हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे बसूरे उतरी चिंत,

पूर्ण पद पाया, साध संग पे परम मिटाया, जड का देखो तद रहया समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवा, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुरु नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रखाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पारवंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर चो लिम लागी।

की पाई। सोग सहज सांत आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। नाम रास सासंघाटी कहो नानक प्रभु अवधा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सा मिटे कलेस। चरण कम मन में परवेश उचरो राम नाम लख बारी। अमृत रस पीओ प्यारी रखाओ। सोग सहज रसमहा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा। काम क्रोध लो मद खोए साध के संग किलब सब थोए। हर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक दीजे साधर वाला। गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पहने खाए इस आस क्यों बने माए। खमसार आन कम लागे हौडी बदले रतन त्यागे रखाओ। प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत का शोभा। अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तसे न जाने स्वान। कहो नानक हम लूण हरामी बगस लो प्रभु अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मनमय ध्यान। सगल तीर्थ मज्जन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई। कोड़ जन्म की मल ले जाई रखाओ। हर की कथा हृदय बसाई।

प्राप्त साधु तूरे गौड़ी मोहल्ला पंजवा खांदा पैन दा मुँह कर पाए तिसनु जो है तू तरमराय तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना होड़ जन्म पर में बोजू न रहाओ सागत की ऐसी है रीत चूझ करे सगल विपरीत जियो प्राण जन मन तन खारिया सोई ठाकर मनो बसारिया बधे विकार लिखे बो कागर नान कुदर कृपा सो।

मीत सगल मनोरथ मुक्तपादीत। ऐसा मीत करो सब कोय जाते विरथा कोई न होए। हरहाओ आपने स्वर दे ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया। रघना गिद्धि बोल तराम पूर्ण होए सगले काम। अनक बार नानक बलिहारा सबल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महल्ला पनवा कोट बेगन हिरे किन माघे। हर घर कथा सा संग सुनागे पीवत राम रस अमृत गुण जात। जप चरण मिटी खोता सरहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निधान। जाके हृदय से भगवान औखद मंत्र तंस विचार। करने हार दे मैं तार तस परम पजो पार ब्रह्म। कहो नानक अटल इहो धर्म गौड़ी महला पंजवा। कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई। राम रमन तरण पै सागर तरण सूर पारे जमकागर। हरहाओ तगुर मंत्र दी हो नाम ए आसर पूर्ण पै काम। जब तक संजम पूरी वड़ियाई गुर कृपाल हर पै सगाई। मान मुखोए गुर परम एक नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी महला पनवा दिखे राज ते अंधला पारी। दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वड़ियाई। माया मगन नरक ले जाई रहाओ। रोग ग्रस्त चितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ। चरण कम से लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत। सदा सदा सिमरो प्रा स्वामी मिल नानखर अंतर जामी। गौड़ी महला पनवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रो ले निवारे। ऐसा हार श्रमो सब कोय सर्व कला पूर्ण प्रसोए। रहाओ महातप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुद फल पाहे। उगत सियानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे। गौड़ी महला पनवा थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड़पागी हर कीर्तन गाई है पार ब्रह्म तू देता पाई है। रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाव सागर चढ़ उतरे पार। साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए।

सोपाया मया करी पूर्ण हराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा धोती खोल विछाए हेठ, गर्द वांगू लागे पेट। बिनकर तूती मुक्त न पाई है, मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना,

आओ दुट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह सहसा बस कर दीने अमृत नाम मारस पीने निरप होए पजो भगवान सासंत मिलकी नूदान सरण परे प्रभ अंतर जामी नान कोट पकरी प्रस्वामी गौड़ी महला पंजवा हर सिंह राते पाए ना जले हर सिंह राते माया नहीं चले हर सिंह राते नहीं डूबे जला हर सिंह राते सुफल फला सब मिटे तुम्हारे नाय पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ हर सिंह राते मिटे सब चिंता हर स्यों सो रचे।

पांचेले मल पाए एकत्रा एक जके भजकीये दबै रागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थीये परम जराय तिराई भूता पंथ एक कर पेखिया सही सुसु की नी भूता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पो नाही ता आसन बांधियो चिंगी अनहत बानी तत विचार डंडा कर राखियो जुगत ना मन पानी ऐसा जोगी वड़पागी पेट माया के बंधन काट सेवा पूज करो जि मूर्त की नानक तिस पग चट गौड़ी महला पंजवा अनूप दार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औहदे जा को गुर दिया ताके निर्मल चीता रखाओ अंधकार मिट्यो ते तांते गुर शब्दी परगासा रंकी जाली ताकी काटी जाको सासंत विश्वासा तारी ले पुजल तारू बिखड़ा होत साधु संगा पूर्ण हो ही मन की आसा गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त अघाए नानक हर जीव ताको देव जाग हो कुमनाए गौड़ी महला पनवा दया मया कर प्राण पद मोरे मोय अनासरण प्रतोरी अंध कुमे हाथ दे राखो पशु स्यान पुगत न मोरी रघाओ करण करामन सब कुछ तुम ही तुम समर्थ नाही अनहोरी तुमरी गत में तो तुम ही जानी से सेव जन पाग मथोरी अपने शिव संग तुम प्रवराते ओत पुत पगतन संजोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत मैं पेदक शिनाही एक जान कई मैं लाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभोवा अनदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समर्थ अपारा तूचे सुखदाते प्राण धोरी नानको प्र की जे कृपा उन संतन के संग संगोरी गौड़ी महला पनवा तुम हर से तीराते संतो निभाए लो मुख पुरख बदाते ओढ़ पचावो दाते रखाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बिधाते राखो शरण अनादीन को करो हमारी गाते तरण सागर बुद्ध चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते हर कृपा दे राखो संगे ते पार पराते ईद ऊत पर तुम समरथा सब कुछ तुम्हारे हाथे ऐसा निधान मुको हर जन चले हमारे साथ निर्गुनिया रे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नान कर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी मोहल्ला पनवा सह सुमायो देव मुको सगुर पय दयाल देव रहाओ ताड़ जेवरी कियो दासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मुको अचरज गुरे दिखायो पयो प्रगास सर उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपय ठहरायो मान आज्ञा सर सो पाए दुख ठाओ गवायो जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर तब आनंद रूप दिखायो नाकश आवत नाकश जावत तब खेल की उहर आयो तो नानक अगम अगम है ठाकुर भक्त ते कर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओढ़ भी जय रे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रघाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बुझ सुख पाइये रे तू प्र करे सोई परमानो सुखद ओई त्याये रे ओढ़ पत ओधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द हो पंजन स्वामी जे भावित से निवाजे रे सब को माल पिता प्रतपाल जी प्राण सुख सागर रे तेंदे तोड़ नहीं से करते पूरे और तनागर रे जाजक जाते नाम तेरा स्वामी कड़कड़ अंतर सोई रे नानक दाता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद हर घर कबू ना मनो विसारे ईगा उहा सर सुख दाता सगल कटा प्रतपारे रघाओ मां कट काटे पीतर रसना नाम पितारे शीतल सांत सुखर सरणी जलती अगन निवारे गर्भ कुंड नरक ते रख हुजल पारे उतारे चरण कमल आरा तुम मन में जमकी त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगमे पारे गुण गावत त्यात सुख सागर जुए जन्म नगारे काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे हर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सदबरेगारे राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद सुगना ही रे घर भगत बेना जीत जन औरतन अमोलक सा संगत जप एखे ना रहाओ सुत संपत बनता विनोद छोड़ गए बो लोग भोग हैवर गैबर राज रंग जाग चले गए मूड।

अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मान बिखे ही मैं लुजी है जाको रे कृपा करे जीवत सोई मरे

शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी नेचर को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो सागते आभय जाहे जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ जौला होक सोचो चितव तौ लो दुखन भरे जौ कृपाल गुर पूरा फिटया तो आनंद सहज जेती स्यानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जौ लो मेरो मेरो करतो तौ लो बे केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलयो तौ लो डान परे पोट डार गुर।

मैं रहता इनका आड़ न पाया। आगे चलन और है पाई ऊहा कामना आया। तीर्थ नहाए और तरनी प्रमता आगे ठौर न पावे ऊहा कामना आवे। ए विद ओ लोग नहीं पति आवे चतर वेद मुख।

बहुमान जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रखाओ सबे गल्ला जातियां सुनके चुप किया कड़गी सुरतना लदिया माया मोड़िया दे बुझारत सारता से अखें डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया एक स दो चौक्या गणी सब एक त साध मुठी एक अदनाय रसीड़ा।

मित्र सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो मसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है भवजल पई है पार मिल साधु संग उधार होए।

साधो त्यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, याते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को हर लीना, तस कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बने आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया फोन, भजन राम चित को माई। उल्ले ओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण। सिमरे हर को नमा रखाओ, लोभ वो माया ममता फोन। आओ विघ्न की सेवा, हरख सोग परसे दे नाहन। सो मूर्त है देवा, स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब। क्यों कंचन अर पैसा, पुस्तक निंदा ए समझा के। लोभ मोह फुन तैसा, दुख सुख ए बाधे जे नाहन। हे तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताए तुम मानो। हे बद को जो प्राणी, गौड़ी महला नावा। मान रे कहाँ पयो तय बौरा, आहे इंस औध कटे नहीं जाने। पयो लोभ संग हौरा, रहाओ जो तान तय अपनो कर मान्यो। हर सुंदर गृह नारी, इनमें काश तेरो रे नाहन। देखो सोच बिचारी, रतन जन्म अपनो तय हारियो। गोविंद गित नहीं जानी, निमख न लीन पयो चरणन स्यों। बिरथा औध सिरानी, कहो नानक सोई नर सुहिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया। निर्भय पद नहीं पावे, गौड़ी महला नावा। नर अचेत पावते डार रे, दीन दयाल सगल पै पंजन। शरण ताए तुम पर रे, रहाओ वेद पुराण जस गुण गावत। ताको नाम ही ये मोह तार रे, पावन नाम जगत में हर को। सेमर सेमर कसमल सब हर रे, मानस दे भौर न पावे। कहु उपाव मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय करना मैं।

कैसा डर कमन शब्द पिछाने तीन ने पावन जिन कहया तिन कहे नुखाने जिन बूझिया तिन सहज पिछाने देख विचार मेरा मन माने कीर्त सूरत मुक्त इकनाई तही निरंजन रहा सुमाई निकर व्याप रहा निचाई।

सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय।

माया मोह सर्ब जंजाला, मन कुचील कुष्ट बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सा सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे और, गुर कुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तारण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाई।

मन त्रिवतासिया अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पै बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर्व तिरप हमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे, साज हृदय से प्रेम निवास, परम तनानक हम ताके दास, गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया, वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया, ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी, बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंत न पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे, दुर्मत हरणाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत, सहस बहु मद कीट मैं खसा, हरणाक्ष ले नहो बेदासा, दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमना सिंघारे, रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे, आपे सदगुर शब्द बीचारे, दूजे पाए दैत संघारे, गुरमुख साज भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई, राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई, जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया, एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई, राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई, बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ, बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला, लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला, नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी, बिन जगदीश पजे नित कुवारी, दार कर महिला से सुखाली, तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली, ऐबर गैबर नेजे वाजे, लस्कर नेब खुवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ, ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहाँ सद पावो, खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे, परपंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे, ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ, उन दो कबल सगल संसारे, दुर्मत अगन जगत पर जारे, सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना, मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी, पत मत खोवे नाम सारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट हर गुण गाए।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल माए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

का सा मरे संते माया दाम मैं तन दीजे हर अमृत नाम तरैयत मैर मुकदम सिकदार निचल कोई ना दिसे संसार अभरो काल कूड़ सिर मारे निचल एक सच्चा ससोई।

लाख अडंबर बहुत विस्तारा, ना बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, हर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी महला पंजवा, आद मर जो अंत निबाह, सो सजम मेरा मन चाह, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ, बिन सतनाही छो

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पचमोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

चंदन शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, प्यार संतन नाप करायो, नाम कर्म न धर्म सोच, प्राप गए पूजा आपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वशल हरनायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समृत संत उठायो।

भावे अन ना पानी, पानी अन ना भावे, मरिए भावे, बिन पर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बेनंती, जे गुर भावे, जो मिले तवे मिलाईए, आपे मिल ले सुखदाता, आ मिलिया खर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना तिर मरे न जाए, गौड़ी मोहल्ला तीजा, कामन हर रस वेदी जियो, हर के सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज सुमाए, दुबदा सहज सुमाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, यो शरीर कूड़ कुसत भरिया, गलताई पाप कुमाए, गुरमुख भगत जित सहतन उपजय।

मोहन तो सत संग आवे दर्स त्याना मोहन जम नेड़ न आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नागी जो एक मन त्याग है मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पाव है मल मूत मूल जे मुक्त होते छे देख दर्श सुगयाना बिन मंतनान कराज निचल पूर्ण पुरख भगवाना मोहन तू सुबल फलिया सन परवार मोहन पुत्र मीत भाई कुटम सब तारे तारिया जहान लया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनू तन कहया तेन जम नेड़ न आया बेंत गुण तेरे कथे ना जाही सदगुर पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लगतरिया संसारे गौड़ी मोहल्ला पंजवा सलोक पतत असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाप को तिन किलबख दानहार शंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कम आराधिये जम पंत बिखड़ा अग्न सागर निमख सिमरत साधिये कल मले दहता सुध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पये पंजन घर आया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मने चिंदया पाईए तम अंध कूब ते उधारे नाम मन वसाईए सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जान गुण अंग भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जनतारी करुणामय समर्थ स्वामी घट घट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बेदारो रोग सोग सब दुख बिनसह जगत ना मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कलतारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सब ते ऊज दयाला बेसम पर देवन कौ एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया थारे सब किसे काल कंटक लोभ भू नस जी जाके प्रभस तो प्रसन्न देवा सबल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक किश पुन्नी जगत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पंजवा सुन सहिए मिल उदम करेगा मनाए लय हर कंत मान त्याकर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी बस आया फिर छोड़ न जाई हे रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पय नरक निवार उनीत करेथ जंत सुन सखिए ए परी बेनंती यो मता तपकाइये सह सुपाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइये कल कलेश मिटे प्रमनस मन तिंदिया फल पाईए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईए सगी इश करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृत पुरख मिलाए नानक तिन मिलया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलिया सुन सगिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी मोहल्ला पंजवा सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत नरोदरा
ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤਿਬੁਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਅਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਾ ਪਾਪ ਹਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਕਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੋ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਧਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗਤਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਨਮ

ओं साध सदगुर नमस्कारं आद मद अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुगयासन आपे सुनत आप ही जासन अपने आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सूखम आपे अस्थूला।

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुखियो अकारा एक सूद परोवन हारा पिन पिन त्रैगुण विस्थारं निर्गुण ते सरगुण त्रिटारं सगल पाण कर करे उपायो जन्म मरण मनमोह बढ़ायो दू पाद ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा श्लोक से सा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत ससो सत पुरख ते पिन न को तो सरन परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप ताहू को जापत तो साधु ए पुंचन हारा नानक ताकै सद बलिहारा श्लोक तन तन खां पुकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जा सब धूर पवड़ी तदा

तर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कैत सुंत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबता के ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पल ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक है को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिडाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन वासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सतसंग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभ आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जोग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो

के मोहे न बुझे तो प्रभ सदगु संग लेख गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका ते गुरमुख निर्मल बुद्ध सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग जो रते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कहे न को आओ बैठ आदर शुभ देव वा मेल नहीं पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्त कर्म लिखे तुर जाके हर संप नानक करता के सलोक लालच चूड़ बेकार मोह व्याप्त मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यो नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बेखे रस राते अंग बुद्ध माया मद माते या माया में जन्मे मरना ज्यो जो हुक्म तेवे त्यो करना को ऊन न को पूरा को सुगर न को मूरा जित जित लाभो तित तित लगना नानक ठाकुर सदा अलिपना श्लोक लाल गोपाल गोविंद प्रभ गहर गंभीर अथाह दूसरा ही अवर को नानक बे प्रवाह पौड़ी लल्ला ताके लवे न को एक आप अवर न हो वनहार हो सद आया ओवा का अंत न काहू पाया पीठ हस्त में पूर समाने पलट पुरुष ठाऊ जाने जाको दीनो हर से अपना नानक गुरमुख हर हर तेज अपना श्लोक आत्म रस से जानिया हरंग सहजे मान नानक तन तन तन जन आए ते परवान पौड़ी आया सबल ताऊ को गनिये जास रसन हर घर जस पनिये आए बसे साधु के संग अनद नाम ते आवे रंग आवत सोजन नाम है राता जाको दया मया विधाता एक आमन फिर जो न आया नानक हर कै दर्स सुमाया श्लोक या जत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझे।

एक नाम ले मने परो यैया जन्म नहारी है पुर पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुर पूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए ताको मात पिता सुतिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिन सुत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

संत सदके नानक पाप विनाशे कद के श्लोक ठाक न हो तीतन हो दार जे हो वो सो प्रसन्न जो जन परम अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठा है नाही जो सगल चाके के लपटाही ठहक ठहक माया संग मुए ओवा के कुशल नकत हो हुए ठाण परी संते संग बसया अमृत नाम तहां जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक ओवा का मन शीतलाया श्लोक डंडौत बंधन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ पौड़ी डड्डा डेरा इहो नहीं जय डेरा तै जान ओआ डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर खाले ताक का तसू नहीं संग चाले ओआ डेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूर्ण भगवान ने।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जब जपया, अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया। नरक नाहे सा संग पौड़ी, नन्ना नरक परे ते नाही। जाके मन तन नाम साही, नाम निधान गुरमुख जो जपते। बिख माया मैं ना ओए खपते, नन्ना कार न होता ताको। ना मंत्र गुर दीनो जाको, निध निधान हर अमृत पूरे। ते बाजे नानक अनघ तूरे, स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दे सर्वत्र मैं ऊन न कतहु उठाए, अंतर भार संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, कट कट अंतर ब्रह्म समाहू, वास देव जलथल मैं रविया, गुर प्रसाद विरले ही गवया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हार कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेन सगले ते रहता, नानक हर हर।

पौड़ी अड़ाड़ा डाड़ मिटे संग साधु कर्म धर्म तत नाम अराधु रूड़ो जे बस्यो रिदमाही हुआ की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत सागत गावारा जे ही ये अंगबुद्ध विकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माए नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट गहो उगत सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसे नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन परे अवहारे शास्त्र सिमरत वेद बुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम फूलन हारे तुम समरथ अगणत अपारे।

दृष्टि आया उस्तद करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मन मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म न प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे ए

सुख होए, नानक सब मैं रब रहया, शांत अनंतर सोए पौड़ी। फेर ओ कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान। हौ छुटके हुए आनंद ते हौ नाही ते आप, अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संते संग होद किरपाला, ओरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रवते हुआ। सलोक लिखे कते ना छूटिए, खिन खिन फूलन हार, बक्सन हार बक्सले, नानक पार उतार। पौड़ी लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अल्प मत, जियो पिंड जिन सुख दिए, ताहे न जानत तत। लाहा माया कारने तैद ढूंढन जाए, देवन हार दातार प्रभ, निमख न मने बसाए। लालच चूड बेकार मोह, या संपे मन माहे, लंपड़ चोर निंदक मह, तिन्हू संग बिहाए। तुद पावे ता बख्स लहे, खोटे संग खरे, नानक पावे पार ब्रह्म, पहान नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हस्त, परमे जन्म अनेक, भवजल ते काढ़ो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो, अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सदगुर बचन समाए। खेमा गही सच संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकुर पई, अंध सुख बिश्राम। खेप निमाही बहुत लाभ।

कृपा हम मूढ़ पापी जित लगतारा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इहो श्लोक आदि अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुर ए नमः जुगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कर क्लेश तन मय मिटावो सिमरो जास विसंपर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाखेर इन्ने राम नाम एक आखेर।

भगत जना कई मन बसराम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बस, प्रभु के सिमरन दुख जम नस, प्रभु के सिमरन काल पर हर, प्रभु के सिमरन दुश्मन टर, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे, प्रभु के सिमरन पौ न व्याप, प्रभु के सिमरन दुख न संताप, प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्वनिधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन हृदय सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जब ता पूजा, प्रभु के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ इस नानी, प्रभु के सिमरन तर्क है मानी, प्रभु के सिमरन हुए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल भला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझ, प्रभु के सिमरन सबके सुज, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए सुमाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरह से तनवंत, प्रभु को सिमरह से पुतवंत, प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरह ते बेमोताज, प्रभु को सिमरह ते सर्व के राज, प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिगारी, प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन रमल रीता, प्रभु को सिमरह तिन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबहू ना चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुरु बानी, प्रभु के सिमरन सहे सुमानी, प्रभु के सिमरन नित्य आसन, प्रभु के सिमरन कमल बेगासन, प्रभु के सिमरन अनहा चुनकार, सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत पगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन मैं आम निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक, तीन दर्द दुख पंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रसाथ अष्टपदी, जय मात पिता सुदमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई, जय महा भयान दूध जम दलै, तै केवल नाम संग तेरा चलै, जय मुस्कल हो वै अद पारी, हर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुनः चरण करतनी तरै, हर को नाम कोड पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सरसठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनक माया रंग तिघना बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग यो जात अकेला, तय हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गद पाई है, टूट नहीं कोट लख बाही, नाम जपत ते पार पराही, अनक बिघन जय आये संघार, हर का नाम तत्काल उधार, अनक जून जन्म में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न थोवे, हर का नाम कोड पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग, जे मार के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संतोसा, जे पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पन तेरा को ना सुजानू, हर का नाम तय नाल पछानू, जय महा भयान तप्त बहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष, तय नानक हर घर

रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ज्ञान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर चिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्र माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टे, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बो दे अनीत, दुध कहां होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पौ व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे, कोट पाव दर गए।

सगल कटा को देव उदान करण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनेया तो प्रसदा सुमाल जिनकी अत चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी परमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतू सासवा सीगारेया सर्व अग्न में जिने उबारेया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कशु न बूझे बक्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद हर ऊपर सुख बसे तुद प्रात मीत बनता संग हसे ये प्रसाद पीवे सी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप कर्ण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ लेओ प्रभ आपे।

अंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोड़ गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, जे ठाकर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्त आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने मत, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, दीर्घ की छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे, जो दिसे सो चलनहार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन तान कुटुंब सुबाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे हस्त, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भक्त स्वाद की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को थावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तान नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासले दिवकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सबल दे नानक हर हर नाम लय, बिरती सागत की आरजा, साज बिना के होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवतता के दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम, तन तन ते जन जे कड़ बस्यो हरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जान नहार प्रभु परवीन, बार पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आपत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप कर तन बेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान पर सगल

सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने के सब ते नीचा।

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सोबल पला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाईये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सबसठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी तीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी, नित्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रय रूपना पेखे नेतर साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हर मन की बासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोड़ मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए पिन्न, कर्म करत होवे ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानको वैष्णो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मल खोवे इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल सुख में जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार पास प्रेत मुग्द पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तुझ नजरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निट हर जान, तो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोऊ कहावे तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत नानको पुरख कहिए

हर करंग हस कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ऊबकस पयाल कभू बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मनहार कभू नित करे बोपात कभू सोए रहे दिन रात कभू महा क्रोध विकराल कभू सर्व की हो तरवाल कभू होए बह बड़ राजा कभो पेखारी नीच का साजा कभू अब कीर्त में आवे कभू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कभू होए पंडित करे बखियान कभू मोन तारी लावे ध्यान कभू तड़ती स्नान कभू सिर साधक हो ज्ञान कभू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

देख ठाकुर का रंग सा संग दिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपगे हर बिंद कर घर कर्म श्रवण घर कथा हर दर गए नानक उज्जल मथा बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने ये तुद कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक ते निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिकी जानो तिशना बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्यो हर जन

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मय जोगी तप मय तपीसर गृहस्थ मय भोगी त्याए त्याय भगते सुख पाया नानक थ पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मै जा को परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नम रूप रंग नम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मन तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चल बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ दृढ़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाछे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम दान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई ते स्यों सब केश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। श्लोक महला पंजवां डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ जिन्ना सतगुर भेटिया महला पंजवां दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वथ सुहावी साए नानक नावज पंदो तिस्तनी पौड़ी सिमरत सातर सोध सब किने की मना जानी जोजन पेटे साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख ए रतना खाणी मस्तक होवे लिखया हर सिमर पुराणी तुसा दिचे सच नाम नानक मेहमाणी। श्लोक महला पंजवां अंतर चिंता नैणी सुखी

आप मोहे मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्मा किए बहुरंगा। ऐसे कार हम बहुत बसाए।

हर हर बास सुगंध बसाई, तहर कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब तंदा, गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जम ते उल्ट पए है राम, दुख बिनसे सो कियो विश्राम, बैरी उल्ट पए है मीता, सागत उल्ट सुजन पै चीता, अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया, साध पई जब गोबिंद जाने आ रहाओ, तन मैं होती कोड उपाध, उल्ट पई सुख सहज समाध, आप शाने आपे आप, रोग ना व्यापे तीनों ताप, तब मन उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ, कहो कबीर सुख सहज समाव, आप ना डरो ना अवर डरावो, गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता, शब्द अतीत अनाह दराता, जिन राम जानिया तिने पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ, सो गुर करो जे बौर ना करना, सो पद रवो जे बौर ना रवना, सो त्यान तरो जे बौर ना तरना, ऐसे मरो जे बौर ना मरना, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग

इस माटी में पवन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आम न जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत रसी जोन प्रमे आयो, अब के शुड़के ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, दरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परम निधान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपै त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो कारोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर चित चेतया, आराम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आशा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पद करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊं रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुई सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बेपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरे ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटा ना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुगलो तंदा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारहवीं मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे पांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊच ते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत विचार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार रखाओ, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार गौड़ी, लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दस नाही, तब यो नंद कहां थोरे रहाओ।
संकट नहीं परे, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

बैकुंठ जाइए, ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक तोए। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे, हमारा जीवन निंदक लोर। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरभव, तरन तारन राम राया अरहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है, एक के देखत मन पतियाही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे, करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई, गाफल हो के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ, पंच पैरुआ दर में रहते। इनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तौले प्रगास उजारा, नाव कर देख जो कामन पूली। बस अनूप न पाई, कैत कबीर नवे कर मुसे। दसवें तत् सुमाई गौड़ी, माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। थे सुनकाद जस गुण गावे, तस बसे मोरे प्राणा ना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पय बंधन पागे, मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्राप्त, दूसर मने ना आना ना। चंद्र बाज पय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काढ़ सकत शिव सह प्रगास्यो, एक एक सुमाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख, प्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बावन अखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सत्य नाम करता पुरख, गुर प्रसाद बामन अक्षर। लोग त्रय सब कुछ इन ही मागे, ए अखर खिर जाएंगे। ओए अखर इन मैं नागे, जा बोलते अक्षर आवा। जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई। जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार। बड़क बीज मैं रव रहे हो, जाको तीन लोग विस्तार। अले लहंता पेद शय, कश कह पायो पेद। उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अछेद। तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारणे, कशुक पढ़िए ज्ञान। ओंकार आद मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना। ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा। आर देता कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा। खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड़ ना दैद स्तावा। खसमे जान खिमा का रहे, तो होए नख्याओ अखय पदल है। गग्गा गुर के भजन पछाना, दूजी बात न तरई काना। रहे बिहंगम कते ना जाई, आगे गहे गह गगन रखाई। कग्गा काट काट निमसे सोई, काट फूटे कड़ कवे न होई।

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंभ, अहिंस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

सो को न कह समझाए जाते आवागम बिलाए रहाओ बौद्ध धर्म न रूपी है करता दिसे सब लोए कम कर्म ते छूटी है जे साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा साध हृदय बसे कौन घेरे अवमान बार उदक पखारिये कर पीतर बेबद बेकार शुद्ध कमन पर होए बो सुज कुंचर वेद व्यवहार राव प्रगास रजनी जसा गत जांत सब संसार पारस मानो तांबो छोए कनक होत नहीं बार परम परस गुर पेटी है पूर्व लिखत ललाट उन मन मान मन गी मिले छुटकत बज्र कपाट भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुर निर्गुण एक विचार अनक जतन निग्रह किए तारी न टरे परम फास प्रेम भगत नहीं उपजे ता ते रविदास उदास एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग गुर प्रसाद राग अस महला पहला कर पहला सोदर सो दर तेरा केह सो कर केह जित बै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संख केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सो कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनु पौन पानी बै संतर गावे राजा तर्म दुवारे गावन तुदनु चित गुप्त लिख जानन लिख लिख तर्म विचारे गावन तुदनु ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनु इंदर इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनु साध विचारे गावन तुदनु जति सती संतोखी गावन तुदनु वीर करारे गावन तुदनु पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन सुरगुमश पय आले गावन तुदनु रत्न उपाय तेरे जेते आठ सठ तीर्थ नाले गावन तुदनु जोध महाबल सूरा गावन तुदनु कहानी चारे गावन तुदनु खंड मंडल ब्रह मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनु गावन जोत पावन रते तेरे पवित्र साले होर केते तुदनु गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख कीता अपना ज्यो तेदी वड्याई जुत पावे सोई करसी फेर हुक्मना करना जाई उपात साहो सहापत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम्य पारा सब त्यावे तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हार हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू कट कट अंतर सब निरंतर जी हरे को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी हम तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हम तुद बिन अबर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी।

चतुर जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की वासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो इनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी।

भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक तेरी अनक करे घर पूजा जी तब तापे जपे बेंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे घर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग ऐसा मोहल्ला पहला चौप दे कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होई कीमत पाए ना कह आ जाए कहने वाले तेरे रहे सुमाए।

आपे नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवतर है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ एहा भगत एहो तब ताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहिंदिया उठदिया नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाह ए तरंग नाचो रख रख पाओ।

मोहल्ला पहला पौने पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंधले दैसर मूंड पिटाया रावण मार क्या वड्डा पाया।

अमृत चख सतगुर सेव अमृत शब्द पाख साचे शब्द मुक्त गद पाए नानक विचों आप गवाए आसा महला पहला जो तन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया हृदय नाम नाही मन पंग अनदन नाल प्यारे संग हर जो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी गरस पाया ना पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ताके सद बल हारे जाओ जो हर राते से जन परवान जिनकी संगत परम निधान हर वर जिन पाया तन नारी हर सो राती शब्द विचारी आप तर संगत कुल तार सदगुर सेव तत विचार हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सद पाओ नानक बख्शे पूछ न होए दूजा मेटे एक सोए आसा महला पहला एक आवे एक जावे आई एक आ रते रहे सुमाई एक तरण गगन में ठौर न पावे से कर्महीन हर नाम न त्यावे गुर पूरे ते गत मित पाई यो संसार बेखवत अद फौजल गुर शब्दी घर पार लंघाई हरहाओ जिनको आप लय प्रामेल जिनको काल न सके पेल गुरमुख निर्मल रहे प्यारे ज्यों जल अंब ऊपर कवल निरारे बुरा पला को किसनु कहिए दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लइए अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार सात वेद सिमरत बो भेद अड़सड़ मज्जन हर सरेद गुरमुख निर्मल मैल ना लाग नानक हृदय नाम वड़े तुर पग आसा महला पहला नेव ने पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हृदय हर रविया हृदय देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन घर लभ मिटे अज्ञान होए उजियारा हरहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे विच होमे परम न जाई सदगुर मिले तहोमे टूटे ताको लेखे पाई हर घर नाम भगत प्रे प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वचल जग जीवन दाता मत गुरमत घर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रपाए मनसा मने सुमाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किस को कहे सुनावे किस को किस समझावे समझ रहे किसे पढ़ावे पढ़ गुण बूझे सदगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पाज मेरे मन गैर गंभीरा रहाओ अंत तरंग भक्त रंगा अनदन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म सागत संसार राम भगत जन रहे निरारा।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीप गदे भौजले डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन खारो। पंच सखी मिल दुन करेगा, सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा कर सेवा महला पहला। मन मोती दे गहना होवे, पौन होवे सूत तारी। खिमा सीगार कामन तन पैर, रावे लाल प्यारी। लाल बहुगुण कामन मोगी, तेरे गुण होए न अबरी रहाओ। हर घर घर कंचले पैर, दामोदर दंत ले। कर कर करता कंगन पैर, इन चित तेरे। मासूदन करमुंदरी पैर, परमेश्वर पट ले। तीरज तड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा दे। मन मंदिर जे दीपक जले, काया सेज करे। ज्ञान राओ जब सेजे आवे, ता नानक भोग करे। आसा महला पहला, कीता होवे करे कराया। क्या कहिए पाई, जो कुछ करना सो कराया। कीते क्या चितराई, तेरा हुकुम पला तु पावे। नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम सुमावे रहाओ। किरत पया परवाना लिखिया, बहुत हुक्म ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई।

सोई जन जाने हर गुण सदगी आख वखाने जिन घर सेवया तिन सुख पाया सहजेगी कर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए।

माया मूठा चेतै नाही, परमे पूला बोती राही। बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उतरी केरे। आवर उपदेश आप ना बूझ, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीज।

जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतो ना जाई हरहाओ टोट ना आवे निखुट ना जाए खाए खर्च मन रह अघाए सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना इस तन ते सब जग बरसाना तिन हर तन पाया जिस पुरब लखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मोहल्ला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काती पाकी बाढ़ परानी जो जन्मे तो जन हो मुआ गोविंद भगत अस्तर है थिया रहाओ जिनते सर पर पौसी रात रहन गई फिर होए प्रभात माया मोहे तो रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे कहो नानक गुण गई है नीत मुख उज्जल हो निर्मल चीत आसा महला पंजवा नौनद तेरे सग

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गुर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन, उत्तम मत मेरे हृदय तू आवो, त्यावो गावो गुण गोविंदा, आत प्रीतम मोह लागे नाओ, रहाओ तृप्त अगामन साचे नाय, हर सड़ मजन संत तुराय, सामे जानो करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास अगल का छोड़ अब महान, नानक कौ गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास पई मधपूरी, ताते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़द कोर अंधकूप मह, निकस्यो मेरे भाई रे, रहाओ मां अगा अगन का सागर, गुर भोयथ तारे रतनागर, दुत्तर अंध बिखम ए माया, गुर पूरे प्रगट मार दिखाया, जाप ताप कश उगत न मोरी, गुर नानक सरणा।

मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत पद केवल नाम सरंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै हरहाओ जब तब संजम तरम ना कमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीज करमा सरण परे की राखो शर्मा आसा महला पंजवा कुछ बिन अवर नही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी प्रा मेरा ताहे जी डराही तुमरी ओट तुम्हारी आसा बैठत उठत सोवत जागत विसर नही तू सास गिरासा रहाओ राख राख शरण प्रव्यापनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छिड़ाए प्रीतम स्यों मेरो।

पुर पूरे अंध भया सा मिटे रसूरे रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई ठंडी ताती मिट्टी खाई ओ ना बाला बूढ़ा पाई हरहाओ नानक दास सास सरनाई गुर प्रसाद को पार पराई आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांत सदा सुख पावे केल भग जाहे सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रे पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साल जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, राग आसा, कार सेवा, महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सुग सहज मन सोई।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंद की गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रुढ़ाई, आसा महला पंजवा, बाहर तोय अंतर मलमायला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सुई डोरा, रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र कहो तरकन लागा, तत जोग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब खे जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, पर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लै बरबूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, अज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ, बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, चूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिगसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काट बसारे औगुण, अपना बिरद संहारिया, होए कृपाल माधपित न्याई, बारग जो प्रदपारिया, गुर सिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गरा जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए कि पौ ना व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, ज्या तू साहेब ता पौ केहा, हौ तुद बिन किसा लाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, रहाओ, जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाई है, विण नावे सज बौराया, नाम मिले सुख पाई है, क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कुछ कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म चूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंतन मेरा ठार थियो, रहाओ।
तुमरी कृपा ते पयो साध संग यो काय तुम आप कियो दृढ़ कर चरण गए प्रतुमरे हैजे विखिया पई कियो सुख निधान नाम प्रतुमरा यो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा में सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेर लियो तन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है नानक नाम आधार हीओ आसा महला पंजवा आगे ही ते सब किश हुआ अवर के जाने ज्ञाना पूर चूक अपना बार्ग बक्सया पार ब्रह्म भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन को राख लिया काटिया रोग मांस उपाया

काउ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जप ये नाम, साध संग मन सोवत जागे, ता प्रभु नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, उपद परलोखिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करण करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा, कोड़ जन्म के रे पवारे,

गुरपूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सम्हारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन हर अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, हरहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, हरहाओ आपे सूर किरण विस्तार, तोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाव, कहो नानक गुर ब्रह्म पखोया, अंद रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम मखाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाव मूर्ख मुगद अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु ना जाना मत मेरी तोरी, बिनवत नानक ओड प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुरे अपनी, कर कृपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैन आए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब तिसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जन के, हाथ निर्मल दास की जुगता, हरहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोए निर्गुण कौ लिहो उधारी, हरहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरमंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मनमसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अहंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, हरहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक जो प्रसरण आई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरे।

साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझ की तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेर परे पंडार टोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तब तखरी पलो पयो प्रे कहे आ मानिया सूग सहज इस कर का जानिया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमतदार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम सजन लागा सुख सहज मेरा तन सुहागा

ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हम पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब विसरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संतृप्ता से हर घर त्याय हर कृपा अपने नाय लाए सर्व सुख पर तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन्म मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाई गे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कलमा दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस मन वस्या हर का नाम नानक इस ऊपर कुर्बान।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रमनवासी रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समाही, जाकी बख्स न मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री ग्रे जाके पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओड़ गही निरपो पद पाई है, सास सास तो गुणत गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे।

वंजन वहंदे बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगी है आड़ पैर गुण गाय साधु संगी है रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन

तब गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता, तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता, तभी लो दुखिया गुरमल हुक्म पछाणिया, तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया, ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको, नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गृह निवारे सदगुरु दे अपना नाओ, बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ, गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ, रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना गिरड़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन।

सेवक कौ निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया।

भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहल्ला पंजवां आगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सतगुर बख्शिया हर नाम कलयुग उधारिया गुरदेव माल मूत मूर्जे मुगत होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए सजुग त्रेता द्वापर पणिए कलयुग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने, छे प्रगट घर द्वार।

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन भागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत कट कट कट कट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हराओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे ये मुक्ता ये जूता।

नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मेला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिर नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सदगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया बाजी संसारा खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा होमे चौपड़ खेलना झूठे अंकारा सब जग हारे सोजने गुर शब्द विचारा जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे जो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा अंत सका ई पाया जन्म मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे नानक नाम ना विसर पूरा गुर तारे आसा महला तीजा अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोए न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उरतारे साची शोभा साग दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उरतार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तिसना अगन बुझ नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछाण एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप भुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम पोलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पवन में एक कामाया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सो पाया अमृत मीठा शब्द विचार अनदन भोगे हो में मार तेज आनंद कृपा तार नाम रते सदा सच प्यार हर जा पढ़िए गुर शब्द विचार हर जा पढ़िए हो

नाम ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर, रहाओ गुरमुख आप पछाणिया, तिनी इक मन ध्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, तर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो मैं मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभना होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलमना होए, जिन्नी नाम सारे से मुए मर जागे, हर जात न आयो दिष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए, सच कुमारे सच रहे, सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी, ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया सेज निर्मल परमाण, नानक नाम तिना कदे ना विसरे, ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा, शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया, सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है, तिन मन ने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है, अत क्रोध अवमान, शब्द मरे ता जात जाए, ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर पेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये, जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए, तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी, मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन तीर, जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम वस होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है, आपे लए सवार, सदा सरनाई तिसकी ज्यों पावे त्यों कार्ज सार, भगत नराली अलादी जापे गुर विचार, नानक नाम है।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यो सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेकीय नेचल घर को नाओ कर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु फावे सो फला तेरे पाने कार जिरास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े कर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार्भ के आके भी

अंचल गया साधका नानक है सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे या पेटे हर राए। सुंदर सुगर सुजान प्रा मेरा जीवन दर्द दिखाए। जो जी तुते बिछरे प्यारे जन्म मरे बिखाए। जिस तू मिले सो मिले प्यारे तिसके लागो पाए। जो सुख दर्शन

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंत्र घर पावे प्रभु संगम राती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पछाणे ता प्रभु जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह ना सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तार आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा

तन मन तेरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे, तिन जरा न मरना नरक न परना, जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही, नानक पीड़ ना खाए जियो, नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे, मन सेजन जाए जियो, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला पहला, शांत कर तीजा, तू सुन हरना का।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सुबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाय नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

भगत पाव इव मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे कहे नानक जिस करे कृपा सोहर भगती चित लावे मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोयला तेन सस दा जो हर गुण गावे हर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सो सब किसे जाने जल थल मैयल एको सोई गुरमुख हुकम पछाण जिन हुकम पछाता हरी केरा सोई सर्व सुख पावे इव कहे नानक सो बैरागी अन दिन हर लिव लावे जय जय मन तू तामदा तय तय हर तेरे नाले मन सियाण पछोडी है गुर का शब्द समाले साह तेरे सो सो सदा है एक

तेरा गंड लागे गुरमंग सदा समाले। इयों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर वस्या आए नाम हिया जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। इयों कहे नानक सतगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान इयों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्ब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। इयों कहे नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। ओ निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। इयों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे सेजन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। इयों कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। इयों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

में नाम समाया जिन अंतरे राम नाम वस किन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाए दुरमत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम पर गासया नानक हर पै सदा दिन राती गुरमुख निर कर वासया जिन श्रद्धा राम नाम लगी तिन दूजे चित न लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नावे अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया अंत चलदिया नाल सिखाई राम नाम तन पूंजी संची ना डूबे ना जाई राम नाम ए जुग में तुलगा जमकाल नेड़ ना आवे नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे रामो राम नाम सत्ते सत गुरमुख जानिया राम सेवको गुर सेवा लागा जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम मंतन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मिलाए दीना नाथ जिया का दाता पूरे गुर ते पाए गुरु सिख सिख गुरु है एको गुर उपदेश चलाए राम नाम मंत हिरदय देवे नानक मिलन सुपाए एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा शांत महला चौथा कर दूजा हर हर करता दुख बेनास पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गद पाई हर उत्तम हर हर काम जियो हर उत्तम काम जप गे हर नाम हर जपिए अस्थिर होवे जन्म मरण दोवें दुख मेटे सहजे ही सुख सोवे हर घर कृपा तारो ठाकुर हर जपिए आत्म राम जियो हर घर करता दुख बिनासन पतत पामन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिए सब गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जबत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिरसया हर नाम परम सुख पाया।

हर हर नाम खेत जमाया, कल युग बीज बीजे बिन नावै, सब लाहा मूल गवाया, जन नानक गुर पूरा पाया, मन हिरदे नाम लखाए जियो, कल युग हर किया पाग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो, आसा महला चौथा, हर कीर्त मन भाई परम गद पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुरमस्तक पाग पुराण जियो, तुरमस्तक पाग हर नाम सुहाग, हर नाम में हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बो प्रगटी, हर नाम में हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रापाया, मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीर्त मन पाई परम गद पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सिरे वेखिन खिन, भगत होवै जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारे, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नामा कंठ तारे, सब ए दृट समत कर देख, सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन भाई हर रसन रसाई, वे संगत हर रस होए जियो, हर हर आराध्या गुर शब्द वेगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सोबिध जाने, तन तन गुरु पूरा प्रापाया, लग संगत नाम पछाणे, नामो सेव नामो आराध्य, बिन नामे अवर ना कोए जियो, सत संगत मन भाई हर रस नरसाई, विच संगत हर रस होए जियो, हर दया प्रतारो पाखण हम तारो, कढ़ लेवो शब्द सुपाए जियो, मोची कड़ फाथे निगरत हम जाते, हर भां प्रभु पकराए जियो, प्रभा पकराई उत्तम मत पाई, गुर चरणी जन लागा, हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक पाग सुभागा, जन नानक हर कृपा तारी, मन हर घर मीठा लाए जियो, हर दया प्रतारो पखण हम तारो, कड़ लेवो शब्द सुपाए जियो, आसा महला चौथा, मन नाम जपाना हर घर मन पाना, हर भगत ज नाम मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुखोई, जीवन मरण हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई, मन हर हर वसया गुरमत हर रसया, हर हर रस गटाग पियाओ जियो, मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जी नाम मन चाओ जियो, जग मरण न पाया निद आप लुकाया, मत जम पकरे ले जाए जियो, हर अंतर बार हर प्रभ एको, यो जीड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो खीजे हर वस्तु लुड़ीजे, जिसकी वत सो ले जाए जियो, मनमुख करण पलाव कर परमे, सब औखद दारू लाए जियो, जिसकी वस्त प्रभ लये स्वामी, जन उबरे शब्द कमाए जियो, जग मरण न पाया नित आप लुकाया, मत जम पकरे ले जाए जियो, तो मरण लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, हर शोभा पाई हर नाम वड्याई, हर दरगे पैदे जान जियो, हर दरगे पैदे हर नामे सीधे, हर नामे ते सुख पाया, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, हर रामे नाम सुमाया, हर जान प्रभ रल एको होए, हर जान प्रभ एक समान जियो, तुर मनन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजे बिनसे बिनस बिनासे, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए,
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੁਖ ਚੋਏ ਜੀਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮੂਆ ਜੀਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮਰ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਆਵੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀਓ, ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬਿਨਸ ਬਿਨਸ, ਲਗ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਜੀਓ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ, ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਤਾਕੀਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਅਮਿਤ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਓ, ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਤੁਧ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਓ। ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜੀਓ, ਘਟ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ, ਅਦਿੱਟਿਆ ਗੋਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ, ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੂੰ ਦੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਵਰਤੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁਹੋਈ, ਹਰ ਸਮੇ ਰਵਿਆ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਸਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਹਰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਜੀਓ, ਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾਏ ਜੀਓ, ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾਵੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਜੀਓ, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਧ ਪਾਈਏ ਆਪ ਗਵਾਈਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੋਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਨਾ।